पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हरस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा।

मैं तान दीबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुदे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ।

जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो।

अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हौं मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जप हौ मन रंग, नानक पाइय साधकै संग। जेह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जह पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महापयान तप तपहु काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकर्ख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन बिसराम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन कौवा प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बौ करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इहो हर को नाम, काम तिहिन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत परताप दुरत सब नसै। संत का संग वड भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कार राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी है एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै, चेर जीवै महा उदास तपी सरथीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक अशव है वर भूम दान। नेवली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम संसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। सोच करै दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ ब्यापै, अनक जतन कर कृष्ण ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूटस नाही उब पयाल, मोहे ब्यापह माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग एहो मैं छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी पर रहै। जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बल बल जैसा। सकल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कौ तन तेरो नाउ, न थावे कौ नाउ तेरा थाउ। मिमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ देव दान। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपने गत मित जानो, आपे आपन संग आप प्रभराते। तुमरी उस्त तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए।

सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत इहै बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया। साजन संत करहो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अबरह नाम जपावहो। भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपहो गुण तास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजै कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लाया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपाए सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुख भगवान। सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सार

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहो काश न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समादो तब बैर विरोध किस संग कमातो जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सोक कह किस है ब्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत क्यों कहो किस कहो गनी जब एका है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहो हो कित ठाए जब आपे ही आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबिनासी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तह किस है भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला आपे प्रवीण तह भेद कतेब कहा कूचीन जब अपन आप उरतार तो सगन आप सगन कहा विचार है जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जह अशाल अशेद अपेद सुमाया उहां किस है व्यापत माया।

आपस को आप ही आदेश, तेह गुण का नहीं प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंतो किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा, तह कौन कथ है कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेहु गुण में की नो बिसुथार। पाप पुन तय पई कहावत, को नरक को सुर्ग वंशावत। आल जाल माया जंजाल, हमें मोह परम पह पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोच तौ नानक एक है। जह अवगत भगत, तह आप जह पसरै पसार। संत प्रताप दुहु पाख का आपे हे तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आप है कौतक करे आनंद जोज, आप है रस भोगन निर्जोग। जिस पावै तिस आपन नाए लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगणत अतुलै, ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आप ही एको आप बिसथार। जात इस पावे तां श्रेष्ठ उपाय, अपने पाणे लै समाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनहु बिसारै। तिस ताज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानहु साथ। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप, अंतर जमी रहे ओ व्याप। प्रतपाल है जीयन बहु पांत, जो जो रचियो सो तिस है त्यात। जो जो रचियो सो तिस है त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए। भगत करह हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या। करन हार नानक एक जानिया, जान लागा हर एक नाए। तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कहो सेवा बन आई। हुकम बूझ परम पद पाई, इस ते ऊपर नहीं विचार। जाकह मन बसया निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर। आन देन पूजह गुर के पैर, एह लोक सुखिये पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे हे मिले, साध संग मेल करहो आनंद। गुण गावह प्रभ परमानंद, राम नाम तत करहो विचार। दुर्लभ दे का करहो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ। प्राण तरण का इह सुआओ, आठ पहर प्रभ पे खोह नेरा। मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावहो। मन इच्छे नानक फल पावहो, हलत पलत दोए लेहो सवार। राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दीखिया। जिस मन बसाए तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपहो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वापार करहो वापारी, दरगा निभाए खेप तुम्हारी। एक टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवह जाहे। तिस ते दूर कहा को जाए, उबराय राखन हार ते आए। निरपाओ जपाए सगल पाओ मिटाए, प्रभ के कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जान काओ कोई ना पहुचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पाए अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपति संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगिरी एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तीन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देखो ससी अर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल ना कब हूं डोले सर्व कलाकार खेल खेल मोल ना पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनहे शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे बिस्थार तिस भावे ता एकंकार अनेक कला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्ब भूत आप वरतारा सर्ब नैन आप पेखनहारा सगल समग्र

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिम रहो गोबिंद मन अंतर की उतर चिंद आस अनित त्यागहो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर धन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाहो नारायण एक एक रूप जाति रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन

साध के बचन अमोलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उदार आप तर लोक निसतार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए।

पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुख मने सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होते निधान। सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास।

एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गात होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी

सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिंचेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जीव तिस भावै तिवै चलावै जीव होवै फुरमान ओह वेखे ओना नदर न आवै बहुता इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश असुन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होए लख होवै लख वीश लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़िया चढ़िया हुए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा या ईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण है जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थापर की धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नान गया जापै जाए धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड काया खो कर्म किते पवन पाणी वै संतर किते कान महेश किते बरमे घाटत घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाटत घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछुताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहि मरह न ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक रह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहार तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत अनंत तिथै लो लो आकार जिव जी हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुएदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के

हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगांजे हैं, अपांजे हैं, अचूज हैं, अचांजे हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयाचंद। नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ती विपूते, कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम युगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेता प्रेत देवेशु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंगे स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानं सर्वं परनासी, अनुपे अरूपे समस्तोल निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता, अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछिदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तोपराजी समस्तस्ततामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्तुंग निर्णाते, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपटचंत्व प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुवाल चंत्व प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेवादुदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल, जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नार एक, आद गुरखुदार मूर्त जौन आदस एक, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम काम हीन पेखत ताम हूं नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक, देव पेव ना जाने ही जे वेद और कतेब, रूप रंग ना जात पासो जाने के जेब, तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र वक्र फिरे चतर चक मानी पुरती, लोक चौदह के बिखै जग जा पीजे जाप, आद देवन आद मूर्त अप्यो सबै जी थाप, परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार,
सर्व विश्वरचियो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लख अपेस अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंग हीन अपंग नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जा कह नित भाकत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत पार छत प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनास

अंक कालन काल अनभूत अंग आभा भंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनाढ्य अंडंड बाढ्य चाचरी चंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते के आचिज देश है के आज पेश है के आ गंज कर्म है के आज परम है के आज लुक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण है के बेभूत कर्ण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिन है के कह अधीन है के रुजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गय भूल गैब है के अफुल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहीम है के अकल आलम है के साहिब कलाम है के हुस्न वजू है तमामुल रुजू है हमेतुल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय की यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेती अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है अनांग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनीन है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपट चंतु प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंतु प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
परमाथंग परमाथी सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमित है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंतु प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसन जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवान है हमेश लरवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपांग है मदपार चंतव प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अनचे जो अंग आसन अपांग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिशविश अपंड जल तल महंत दिश विस बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आजिज न बात अंचंज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अंडट अपार आडीठ कर्मु अत टीठ कर्मु अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है हर काल्या है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से है कलखंड से है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत।

तुम बस है, जस के जस है, भुजंग प्रया छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग तामसंग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो वास आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अचरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल, लेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह, नाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी, न राग न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे, भुजंग प्रया छंद। नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे, अगंजुल नामे समस्तुल निवासे, निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी स्वधर्मंग बेपूते, सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी, करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजाय बेपूते गजाय विगनी में, हरियं करियं करिमुल रही में, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्व जुगते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदायांग संगे अपंगंग बेपूते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते। वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये, श्रावक शुद्ध समूह सिदान के, देख फिरयो कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखित प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हुंते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूपो तंग सुरंग सुवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली, बिद न्यावत शीस न जात बिचारे, एते पए तो कहा पए भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख पवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के ताम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सुसंजम नेम अनेक बसिख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पिख है, पावन आहार जति जत तार, सबै सुविचार हजार के दिख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लिख है, शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा, सुसाज सना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर अरीन मरूर मुवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, बचार सार की तार पछैया, तोर देश मलिंद मुवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़ी गडान के तोड़न हार, सो बातन ही चकचार लवैया, साहिब श्री सब को सरनायक, जाचक नेक सुवेक दिवैया, दानव देव फनिंद निशाचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन पर तापन बाढ़ जैत, तुन पापन के बह पुंज खपेंगे, साधु समूह प्रसन्न फिरे, जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजिंदर निरादप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे,
कोट स्नान गजा दिखदान अनेक सुवंबर साज बरेंगे ब्रह्म हेसर विष्णु सचिपत अंत फसे।

जाएंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पगते नर फेर न दे तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। नात फिरियोलिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो। साच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछा को शीश निवायो। को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो। आप हाथ दै मुहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिये। सब बैरन को आस घरिये पूर्ण हुए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू कर हो रक्षा। राख लिहो मुहि रख न हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो। आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जीते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील नाद असंभ। ताका मूड उचारत पेता जाको पेव न पावत वेदा। ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडर जेरज से तज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भव आद जुगा स्वरूप स्वयं भव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट चन दाहि निहरि हो, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मैं हरि हो, रित सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट छा छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैलिहु उबारी, सर्व ठावर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता, श्री अस्तो जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार, चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सैस बनी जय, अर्ध सैस फुन तीन कही जय, पाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कुआंक तरे नहीं आने हो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मतेक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुपेद कहे हम एक न जानियो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखानियो, दोहरा

हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गुचरा तिरंत न पाया अंतु न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या कुआक वखाने आखैता विखै सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया सुर नर मुन जनम मृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुद उपाय एक वेख पर सुन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिकम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खने हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वा सुना सुमानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलह जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनो कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वार सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्दो सुहावा एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन धुरो लिखिया आया एक फिर है कनेरे करह गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत सिओ पवित संगत सुबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जीव मलीन है कि संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जी हो मैले बाहरो निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जुवै हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनह नाही फिर है जो बेता लिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी कूड़ की सो पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी कटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जी को सिख गुरु सिती सन्मुख होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतरात्मा समाले आप चट सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जी को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होत है कोई पुछो वे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करह रसना कह कछु ना जानी चित चिन काहिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ सुमाऊ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ शिव सकता पुपाए कह करता आपे हुकुम वरताए वेखै
ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਕਸਿਓ ਲਿਵਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤੇ

रे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर या भगवंत सगल समग्री तुम रह सूतर तारी तुम ते हो ऐसो

रख लेनी हर मेरी सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ राग सूही छंत महला चौथा घर तीजा

0: मूर्ख पंडित एक मत हुज्जत संजय करे प्यार, तरमी तर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार, जति सदा वह जुक्त न जाने छड़ बह कर बार, सबको पूरा पे हो वह काट ना कोई आख, पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तो लिया जापे महला पहला।
1: वदिस वजगनान का सच्चा विखे सोए, सब निशाला मारियां करता करे सोए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवे, चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिना खुद पाया।

नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझता है सजुग रसंतो का धर्म गैरथवा हो त्रित रथ जत का जोर गैरथवा हो द्वापर तप का सत गैरथवा हो कलजुग रथगन का कूड़ अगैरथवा हो मल्ल।

कौड़ी साहेब हो दयाल कृपा करता साई कर करे सीसो सेवक सेवा करे हुक्म नाय

सूत कने कोई न जाने तुम रायंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगिरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो हे सोआ तुम्हारी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहब आज बोली पाचे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय के सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कर्ण उन्हें आवेता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय तसा पाची ने पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ दर दस्ते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया मन छकिया देख चलाई ते वाहे देख नेट कीता तेना प्यारियां से त्यारियां नी कमाई दस्ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ऐसी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया से चढ़े हार न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया से किसे देखे सत्संग निभाया ते नानी कमाई दा अंदर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त सत गुरुद्वार दा ते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु नाम चेता है चेत आवड़ का सदकार सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब दर्शायत देव ते की फतेह ब्रत की पहच पंथ की जी श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंदे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत तुचे मत पत के राखे आप वाहे गुरु गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दार जी गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुप्राम जिन्हों तो आपके पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा समा सदा अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार जी दुआ कर जोर करो अरदास तू तो भावे ताने रास ये गुरु महाराज जी आपके चरण कमला अरदास बख्श की है अमृत वेले प्रकाशमान हो संगत दर्शन दर देख निशा दता दी हो मेहनत बाणियों के पाठ हो रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वार्ते कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने अज हुक्मनाम की कसाब चार दी वाह कृपा करो होइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत हृदय प्रसाद की कृपाता करो जी अगो तो शोते पित्र बाणी उचारनी बल बुद्धि बख्शिश करो इस खुशी में आप दी बख्शिया दाता भी पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर खाता तार आप दी भोग लाओ शीर प्रसाद सार संकत की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव दे रखा बख्शिश करो जी ईमला कृपा करो आप बख्शिया दाता जो लगना टुट सवारियां प्रवान करनी रिमराज आपके जाना सेवा कर सारे टैरिया संघा सिंगलियां तंदुरुस्ती बख्शो चाड़ी कला बख्शो तो सदा ही इसे अपने चरण सेवा की भावना बख्शने की पालता करनी गरीब दतार जी हो अमृत वे तो लैके दरते आई हैं साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लेखे लाओ संगत दर देते फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ तार पिता जी हो आपके चरण कला दरदास ने तार पिता जी बख्शे करो आप दर के सेवा दार बीबी हरदीप को तार पिता जी ऐस वे दार पिता जी हस्पताल में गरीब महाराज उन्होंने आप जी बच्चे दाल बख्शिश कर रहे हो कृपा कर दार मेरे पर हरदीप कौर से रखो तंदुरुस्त बख्शो चाढ़ी गल करो अरे सुख शांति न गरीब महाराज राज बाजी अपने घर पत्र वास्ते आपने कृपाता करनी मेरे पास सिर रखो सुख शांति बख्शो मेरे जी हरदीप कौर लंबी आज बख्शो चाढ़ी गल बख्शो कृपाता करनी अपने सेवक के दाते इलाज में रखो शुभकामना सब पूरी करो संकत गरीब महाराज आपके चरण समूह संकत बेनती है कि बीबी हतीम करो ने परिवार वालों अरदासा बेनती चैनल प्रवान करनी प्रवान करो दार कृपा करो मैं तो माया बेटा की चैनल प्रवान करो कमाइया सफल करो जी गरीब नवाज से कौम खालसा बंद एकता सुभाग प्यार की बख्शी करके सतन रोजदार बख्शो चैनल जोड़ो कुरबानी का प्यार बख्शो दार हार मैदान दीवान फतेह बख्शने की वादा करो जी गुरु गरीब नवाज
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਿਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਾਰਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਬਲੰਤ ਲੜੀ ਵਾਸਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਕਰਵਾਦਾ ਕਰੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

है। पूरा पुरख पाया वडभागी, सच नाम लिव लावै, मत प्रगास भई मन मानिया रा, मत प्रगास।

रहाव विन सतगुर प्रतीत नयावई नाम न लागो पाऊ सुपने सुख न पावई दुख

पाई। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार, सतगुर का भाणा कमाव दे, बिकहौं मैं तज विकार, मन हट कित उपाय न छूटी है, सिमृत शास्त्र

रहाउ पंखी बिरख सुहावड़े ऊडह चौ दिस जाहे जेता ऊडह दुख घणे नित दा जहत बिललाहे बिन गुर में।

व्यापत है, अधिक रही लपटाए, बिन गुरु मुक्त न पाई है, ना दुबदा माया जाए, माया किसनु आखी है, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो

प्रभ निकट वसै सब ना घट अंतर गुरमुख विर ले जाता नानक नाम मिले वडियाई गुर कै

दोए कर मस्तक धार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किछ जानदा, प्रगट प्रति

गुर अंतर सब दिवसाया, सतगुर पुरख लिखालिया, मस्तक तर कै हथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा ले।

माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगते चंगे आईया बुरिया